आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। हर नया सवेरा एक नया मौसम लेकर आता है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज को मुस्कान

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है भोर सुहानी. हर नया सवेरा एक नया मौसम लेकर आता है. बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज को मुस्कान

0: സമയം 7:59 59 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭ, തുടർന്ന് 8:15 മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
3: पक्का. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
4: हर घर सूर्य घर.
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी. संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे. सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी. भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. हमले में एक भारतीय नाविक की मौत. मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया. और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला. झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं. हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए. और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा. अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है. हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
8: थैंक यू फ्रेंड्स. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू.
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है. सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी. इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है. उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.
9: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई.

0: उनके मुख्य पर 3 रिमांड सी और 5 शादी के लिए चुनाव है।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंत्री हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान

0: और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरवमय संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना।

0: സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 56 സെക്കൻഡും. ഇനി സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना. उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया. और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं. उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है. श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे. उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है. श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की.
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे.
2: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है.
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है. उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है.
2: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी.
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम.
2: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
5: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए हैं, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
2: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
6: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा

0: भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुनावे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र

0: के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और

लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ഇനി സംഗീത കച്ചേരി കേൾക്കാം ഡൽഹിയിലെ.
1: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
2: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती अदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरबंग गायकी उत्सव।
1: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ।
2: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। She's accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun?

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: That was Thumri in Mishra Tilak Kamod. Now Shrimati Aditi Banerjee presents Kajri in Rag Mishra Shivaranjani, set to Kervatal. Chhai Ghata Ghanagor.

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashwani Delhi. Namaskar.

0: एज़ अ मलिया वो रिटर्न में भरता नहीं है, मेरी जो इनकम है इंटरेस्ट है 2,90,000 होती है हर साल, तो आयकर की सीमा जो है 3 लाख है 4 लाख है।
1: अच्छा चलिए, आपका रामकिशन जी जो शुरू का हिस्सा था वो तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, आप हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नागरिक आवाज से लग रहे हैं। जो नए रजीम में जो सीमा है वो 4 लाख की है और पुराने रजीम में सीमा जो है वो 2.5 लाख की, आयकर सीमा का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ये जानना चाहते हैं। तो अभी जो नया बजट आया था आपको याद होगा उसमें 4 लाख से अब शुरू होता है और जो पुराने रजीम में अभी भी वो 2.5 लाख ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं उसी के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। पर सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अतिरिक्त बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, ये भी मैं रामकिशन जी को बताना चाहूंगा।
2: श्रोताओं आइए आपको लिए चले बेंगलुरु, हमारे साथ फोन लाइन पर है एनआर प्रसाद। प्रसाद साहब स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
3: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anna Prasad from Bangalore.
4: Yeah.
3: Hello, Lalima ji. Hello, Manoj ji.
4: Hello, Prasad ji. Ji.
3: Hello, Sharad ji. Two questions.
1: Hello, Mr. Prasad. Yes. Yes, please.
3: Two questions. I filed my ITR. I just want to ask you, Finance Minister announced that any error in filing, or is it system error?
1: Yeah.
3: Actually, I could not get it properly.
1: Mm-hmm.
3: What is that we can refile it once again? My second question is, sir, there's again a tariff war and now this time on the generic medicine, sir.
1: All right.
3: My question is it right time to invest in a pharma or health sector? And before that, I just want to say thank you to you. Your advice maybe a couple of months back on manual SIP on stock when it comes down buying and when it goes up selling really turned out to be very profitable for me. For that, a separate thank you to you. Thank you. The other two questions.
1: Well, I'm glad, first of all, that the advice given by Market Mantra turned out to be good. And I wish, you know, there was a facility, Lalima and Manoj, to send a laddu through the radio, which is unfortunately not there at this point of time. But we are very happy that itself is a laddu for us. Hmm. Your first question is regarding the ITR error. So you have a provision, Mr. Prasad, to revise your return. If there is an error which happens either on your part, or it happens because of the system or something in which you observe, which is clearly visible, you can always go and revise the return. So, and you can revise it any number of times, by the way. And you must be aware now you can revise up to 31st December without a fee. You can even revise by 31st of March. There is a small fee of 1,000, 5,000, which is now under the new provisions. So if there is an error, please do not, because then otherwise your return becomes defective. And your second question was regarding the tariff announcement by President Trump on the generic drugs coming from India. Now, you have to appreciate the fact that as far as America is concerned, I think after 2 years, he says we're going to levy 100% tariffs. So 2 years for me, as far as President Trump is concerned, is a very long time, because we find decisions being switched to two to three times a day sometimes. And moreover, I think Trump regime in 2028 will be almost at its fag end. And the American Constitution says that you can't have a president for more than 2 terms. So Mr. Prasad, I really don't think there should be any matter of concern. So the bullish view on pharma sector basically remains there. I think the order book of the pharma companies which are supplying generic drugs to America, those order books need to be seen, that if they are doing well. I don't see any concern for these announcements after 2 years, because we've seen decisions being you know turned over by evening or next morning. I'm sure you too must have observed. So I continue to remain bullish on Indian pharma sector. India is global world's pharmacy, I would say. So I think India is going to continue domination in that particular area, which should keep the investors excited.
4: All right, we are now joined by Kavita Arya from Noida. Yes, Kavita ji, please ask your question. Yeah.
5: Sir, namaste.
1: Namaste.
5: Sir, मेरे को जानना था कि मैं मार्केट में काम करती हूँ, तो मुझे कौन सा ITR भरना चाहिए और क्या जो भी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होगी?
1: बहुत अच्छा सवाल है और हम लालिमा और मनोज, अभी आज 25 जुलाई है, 31 जुलाई आखिरी तारीख है आयकर विवरणी दाखिल करने की। कविता, अगर आप मार्केट में काम करते हैं और अगर आप F&O में काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो फिर आप ये बिजनेस इनकम, इसको दिखाया जाता है। आपको पता होगा इनकम के 5 स्रोत होते हैं, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स। तो फिर आपको बिजनेस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बकायदा खाते भी रखने पड़ते हैं, डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर कितनी, उसमें फिर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन भी होता है। और अगर आप मार्केट में डिलीवरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि आप एक निवेशक की तरह काम करते हैं, आप डिलीवरी लेते हैं, तो आपको फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो जो पहला वाला मैंने बताया, अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो आपको ITR 3 आपके लिए लगेगा।

0: अगर आप कैपिटल गेन यानी कि डिलीवरी लेके काम करते हैं, और एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम की होगी कि मान लीजिए आप उसको एज अ बिजनेस दिखाते हैं और कल को आप उसको स्विच कर देते हैं, नहीं मैं तो बिजनेस नहीं, मैं तो इसको डिलीवरी की तरह, पहले एफ एंड ओ की तो बात अलग है, पर अगर आप डिलीवरी में भी दो तरीके से किया जा सकता है, कैपिटल गेन में या बिजनेस की तरह, एक दफे आपने जो सिलेक्ट कर लिया उसको फिर आप स्विच नहीं कर सकते हैं, ये कविता इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर इसको कैपिटल गेन में ले रहे हैं तो आईटीआर 2 होगा, अगर बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो आईटीआर 3 होगा। अब ये कविता डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट में जो काम है वो किस प्रकार का है, उसकी वॉल्यूम कितनी है और आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन एज एन इन्वेस्टर है या आपका इंटेंशन एज ए ट्रेडर है। जी,
1: दिल्ली से हमारे साथ जगन लाल जी हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: सर फोन मत काटना, मेरा लाइव रेडियो पे नहीं है, फोन पे ही हूँ।
1: जी
0: हाँ जी हाँ जी
2: सर, मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल है, मैंने अभी आईटीआर 2 भरी थी
0: जी,
2: तो उसमें कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड हाउस प्रॉपर्टी
0: जी,
2: मैंने 2013-14 में एक प्लॉट लिया था
0: जी,
2: और अभी 2025 में अक्टूबर में बेचा
0: जी,
2: तो जब मैंने लिया था 46 लाख का
0: जी,
2: बैंक से कुछ लोन के अगेंस्ट डिफॉल्टर का ऑप्शन में
0: जी,
2: और अभी बिका है वो 38,25,000 का
0: जी,
2: मतलब वो 2013 में लिया था उस टाइम प्रॉपर्टी के रेट चढ़े हुए थे, अब वो होलो हो गया
0: जी।
2: अच्छा, एनी हाउ जब मैंने उसमें फिगर डाली तो उसने इंडेक्सेशन से उसको 46 लाख का तो 76 लाख
0: जी जी जी,
2: लेकिन जब मैं लॉस कैलकुलेट लॉस का कॉलम आया तो उसने ओनली 46 में से वो 38 माइनस करके और वो 8 लाख के करीब जो है वो दिखाया
0: जी।
2: कोई क्लोज कोई चेंज कर दिया है या क्या है या
3: आपका सवाल है?
0: हाँ मैं समझ गया इनका सवाल लालिमा, देखिए इनका नाम जगनाल जी है, तो जगनाल जी देखिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कैपिटल गेन में, एक आपके पास इंडेक्सेशन का एडवांटेज होता है, तो आपने जो क्या किया जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने इंडेक्सेशन चूज कर लिया और उसने जब कैलकुलेशन करके बताया तो उसने विदाउट इंडेक्सेशन लेके आपका सीधा सीधा 46 लाख या इनका जो भी था उसमें से 38 लेस करके 7 लाख कर दिया। तो आप कृपया इसको एक बार और आईटीआर 2 में चेक करिए कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं आप इंडेक्सेशन ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसको जिसमें आप लॉस भर रहे हैं वो भी इंडेक्सेशन में ही भरिए। ये दो आइटम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भरते टाइम मिक्स हो गया है, तो इसको आप एक दफे चेक करिए। लॉस तो आपका दोनों ही हालात में आ रहा है, उसमें ये है कि उसमें, और मैं आपको ये बता दूं इंडेक्सेशन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बढ़ा सकते हैं पर इंडेक्सेशन के माध्यम से आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो इस पे जो कैलकुलेशन है वो उसको ध्यान से फॉलो करिए। मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को मनोज और लालिमा कि जो आयकर की विवरणी है जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन दी हुई है। तो जगनाल जी चेक करिए, अगर आपको फिर भी कठिनाई आ रही है तो मैं सलाह दूंगा आपके इर्द गिर्द अगर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि हम रेडियो पर आई विश के हम सॉल्व कर सकते पर रेडियो पर क्योंकि कैलकुलेशन हम तो दिखा नहीं सकते, तो कोई इर्द गिर्द आपके एक्सपर्ट है आप उसकी सहायता ले सकते हैं, पर मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
3: Alright, let's take a look at the US markets now. US indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.5%. S&P 500 closed marginally higher, while the Nasdaq Composite Index shed over 0.6%. All three major indices posted weekly losses as investors sold chip stocks on worries about massive spending on artificial intelligence. For the week, the Nasdaq slid 2.2% and the S&P 500 declined 0.6%, with both indices posting their second straight weekly losses. Meanwhile, the Dow fell 0.4%, marking its third consecutive weekly decline. And now we are joined by Vishal from Delhi. Yes, Vishal, please ask your question. Ji, Vishal ji.
4: जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आईटी शेयर का कोई स्टॉक ले रखा है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो इसका रिजल्ट तक मेरे को वेट करना चाहिए या सेल कर दूं?
0: अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आईटी में काफी रोलर कोस्टर राइड एक तरह से हो रही है, कभी उथल कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ आईटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं, कुछ के तसल्ली बख्श आए हैं, सैटिस्फैक्ट्री आए हैं, और कुछ एक के बहुत अच्छे नहीं भी आए। अब देखिए विशाल जी, ये तो निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी, क्योंकि हम यहाँ कंपनी स्पेसिफिक तो बात करते नहीं है, तो अब बड़ी दुविधा है कि आप पूछ रहे हैं कि उसके रिजल्ट आए नहीं, अब मालूम नहीं उसके रिजल्ट कैसे आए, और जब तक हम कंपनी का नाम ना जाने और कंपनी का नाम हम आपको लेने नहीं देंगे ना हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कंपनी के जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप एक डिसीजन ले सकते हैं।

0: कि आएगा। और मैं एक मजेदार बताऊं शेयर्स के बारे में बताऊं कि कई दफे क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद उसमें एकदम बिकवाली आती है और उसके रेट नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए विशाल जी, अब ये तो क्योंकि मामला यहां सस्पेंस का है, तो इसमें आप इस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड देखें और कोशिश करें ये जो क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स फाइल करते थे स्टॉक एक्सचेंज में, वो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, ये भी आप देखने की कोशिश करें। हो सकता है उससे आपका कुछ दिशा मिल जाए, बाकी कंपनी के बिना लिए तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा ये बताना जी।
1: आइए आपको लिए चलें गाजियाबाद, हमारे साथ फोन लाइन पर है अमित। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, तो गुड इवनिंग कोहली सर।
0: गुड इवनिंग।
2: आई आल्सो फाइंड वन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर माय वन कंफ्यूजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑन आईसीआर।
0: या
2: तो क्वेश्चन इज कि सर मैंने मेरे जो कुछ शेयर्स हैं तो वो बाईबैक कर लिए थे कंपनी में।
0: या
2: तो आफ्टर बाईबैक इट इज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज वेदर आई हैव दिस इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन और नॉन कैपिटल गेन, क्योंकि एआईएस में वो जो एआई स्टेटमेंट है उसमें वो एज अ डिविडेंड इनकम दिखा रहा है जो कंपनी ने बाईबैक करा, बट लेकिन मेरे जो ब्रोकर साइट है उसमें वो दिखा रहा है इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट विदाउट एनी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इसका मीनिंग है जीरो, बट लेकिन परचेज वैल्यू वो दिखा रहा है। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा कैपिटल गेन होगा या सिंपल डिविडेंड इनकम होगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन फाइल माय आईटीआर 1 और आईटीआर 2।
0: सो अमित, एज पर द न्यू प्रोविजंस दिस इज बायबैक इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड्स नाउ, और जो कैपिटल वैल्यू है यू कैन रिड्यूस योर परचेज प्राइस फ्रॉम दैट। सो आई थिंक यू विल हैव टू रिलाई मोर ऑन एआईएस, व्हाट एआईएस इज शोइंग इज करेक्ट, जो ब्रोकर्स नोट दिखा रहा है हो सकता है ब्रोकर्स नोट माइट बी शोइंग एज पर द ओल्ड प्रोविजंस, एज पर द न्यू प्रोविजन बायबैक इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड यू कैन रिड्यूस द कैपिटल वैल्यू फॉर द कैपिटल गेन लॉस और देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग। सो प्लीज प्लीज फॉलो योर एआईएस, बिकॉज एआईएस में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लालिमा एंड मनोज इट हैज बीन अपडेटेड नाउ, सो द अपडेटेड प्रोविजंस आर देयर एज the amendments made by the budget and all that. So I think you follow AIS and you can also inform this to your broker ke aapke usme aisa aa raha hai to usko aap theek kariye ji.
1: Aaiye khabron ka silsila aage badhate hain. NTPC Limited ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि संचालन से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 7.8% बढ़कर 50,741 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान एनटीपीसी का समेकित शुद्ध लाभ 12.9% बढ़कर 6,896 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर धैर्य के साथ बने हुए हैं दिल्ली से अमित झा। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार सभी को। हेलो सर
1: जी। नमस्ते
3: सर। कोहली सर से मेरा प्रश्न ये है सर
0: जी
3: कि सरकार जो हो रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे मान लो बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं सर, लेकिन जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें एक सर दिक्कत ये आती है जो उसकी इक्विपमेंट होती है ना जो सेटअप बैठाने के लिए सर
0: जी,
3: उसकी जो क्या कहते हैं मशीनरी है वो महंगी पड़ती है, वो अभी भी हम उसको हम आयात ही करते हैं, यानी कि जो ढांचा बैठाने के लिए हमें चाहिए होता है सर वो हम अभी भी विदेश से मंगाते हैं। और दूसरी चीज सर, कभी किसी कंपनी का अगर ए नाम की कोई कंपनी है बी नाम की कंपनी का ए में अगर मर्ज हो जाता है तो किस हिसाब से ये ए नाम की कंपनी को फायदा करेगा, मर्ज होने के मतलब क्या वजह है, क्या इसके फायदे नुकसान है? धन्यवाद सर।
0: अमित, मुझे याद है अमित ने कुछ पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी ग्रीन एनर्जी से काफी कंसर्न रहते हैं, इनके अक्सर सवाल ग्रीन एनर्जी से संबंधित होते हैं। तो इंपोर्टेड इक्विपमेंट उसमें अमित जहा है, पर अमित देखिए, पर धीरे धीरे कर ये सस्ता हो रहा है, इस पर टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। हम सोलर सेल्स की बात करें, हम विंड एनर्जी की बात करें, हम बायोफ्यूल्स की बात करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो धीरे धीरे करके हम इवॉल्व कर रहे हैं अमित। पहले के मुकाबले अब बहुत सस्ता है, कुछ इक्विपमेंट अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर भरसक प्रयास चल रहे हैं इसको भारत में ही लाने का और भारत में ही करने का। दूसरा, आपने कंपनी मर्ज करने के बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार इसको हम अंग्रेजी में सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस कहते हैं, जैसे एक कंपनी के पास कुछ एक स्ट्रेंथ है, दूसरी कंपनी के पास दूसरी स्ट्रेंथ है, और दोनों मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं, तो एक और एक 11 के कॉन्सेप्ट पे मर्जर किया जाता है और एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक करकर और आगे बढ़ने की मुहिम होती है। उसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखाई देती है, बहुत सारे कारण होते हैं मर्जर के अमित। अब कोई मर्जर अब की बार आएगा तो फिर हम आपसे उसको स्पेसिफिकली बात करेंगे जी।
4: ऑलराइट, वी आर जॉइंड बाय प्रेमजीत फ्रॉम दिल्ली। यस प्रेमजीत जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: नमस्कार पूरे एंटायर टीम को। कोहली साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शिष्य हूँ, आपको प्रणाम।
0: मेरा भी प्रणाम सर।

0: सर मेरा सवाल है, मैं सी फेरर हूँ सर, मैं नाविक हूँ जो विदेशों में जहाजों पे काम करता हूँ जिन पे आजकल डिस्प्यूटेड डिस्ट्रक्शन चल रहा है
1: जी, जी.
0: सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग को सर अलॉटमेंट होता है सर यूएसडी में या यूरो में एनआरई अकाउंट में, तो हम जो पैसा कमाते हैं उस पर क्या यहाँ की इंडियन टैक्स रिजिम में कोई प्रोविजन है, कोई अलग सा क्लाउज है? क्योंकि हम लोग तो एग्जेम्प्टेड है सर, एज पर लॉ बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है?
1: जी चलिए जी प्रेम जी, तो आपका आपका सवाल समझ में आ गया. देखिए आप सी फेरर हैं और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं 180 दिन, तो ऐसे हालात में फिर आप एनआरआई हो जाते हैं. तो एनआरआई की जो टैक्सेबल इनकम भारत में जो इनकम है वही टैक्सेबल है, विदेश में जो इनकम हो रही है वो भारत में टैक्सेबल नहीं है. इस पैसे को निवेश करके जब आप भारत से कमाते हैं, मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया, म्यूचुअल फंड्स में कुछ लिया, कुछ भी आपने निवेश किया, वो फिर प्रेमजीत जी टैक्सेबल हो जाती है. तो जो आपकी डॉलर्स में इनकम आ रही है, विदेशी मुद्रा में आ रही है, उस दौरान जब आप भारत से बाहर हैं, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एनआरआई है कि नहीं. उसके लिए प्रोविजंस हैं आयकर अधिनियम के अंदर, जिसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन जब बोलते हैं. तो 180 दिन अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तो आप उस साल में एनआरआई हो जाते हैं. उसमें भारत में आपकी सिर्फ भारतीय इनकम टैक्सेबल होगी, विदेशी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा. अगर आपका दोनों जगह टैक्स लग गया है, मान लीजिए आप जिस देश में है उस देश में लग गया, सी फेयरर्स को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है मनोज, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आप जब पानी पर हैं तो कुछ पीरियड के लिए आप किसी और पानी में चले गए, फिर किसी और देश के. अच्छा, मरीन रूल्स भी होते हैं कि आप किस देश का ये पानी है, तो बड़ी ही कठिन परिस्थिति कई बार हो जाती है. तो आसान भाषा में आप ऐसे रखिए कि अगर आप एनआरआई हैं बाय इनकम टैक्स लॉ, तो उसमें आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल नहीं होगी. केवल भारत में निवेश किया हुआ पैसा है, भारत में कोई बिजनेस है, भारत में कोई पार्ट टाइम जॉब है, वही सिर्फ टैक्सेबल होगा.
2: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर है प्रकाश. प्रकाश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
3: जी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार.
2: जी नमस्ते.
3: कोहली साहब को भी नमस्कार.
1: नमस्कार प्रकाश जी.
3: सर मेरा क्वेश्चन आईटीआर के बारे में ही है. ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आईटीआर 1 में है प्रोविजन है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है क्या वो भी हम आईटीआर 1 में कोई उसमें कोई उल्लेख है नहीं उसमें उसका, तो उसके लिए आईटीआर 2 भरना पड़ता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉस हो?
1: जी उसके लिए फिर आपको आईटीआर 2, बिल्कुल प्रकाश जी आपने ठीक पकड़ा है, अगर आपका सैलरी इनकम है और थोड़ा सा कैपिटल गेन है और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो फिर आप आईटीआर 1 थोड़ा सा सरल है, उसका नाम भी सरल होता है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं. पर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है जिसको आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रकाश जी आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना चाहिए. बहुत अच्छी आपने रिसर्च और जानकारी हासिल करी है, आपकी जानकारी बहुत दुरुस्त है, इस बात को मैं सत्यापित कर सकता हूं.
4: Alright, let's take a look at another story now. India has been placed in the lower tier of additional tariffs under the final measures under Section 301 of the US Trade Act, providing a relative advantage to Indian exports in key sectors. The Commerce and Industry Ministry today informed that the United States Trade Representative has imposed an additional 10% duty on imports from India, which is a reduction from the 12.5% duty initially proposed on the 2nd of June. This year. The ministry noted that India's exports to the United States, which currently attract zero additional duties such as general pharmaceuticals, smartphones and certain other specified products, continue to remain outside the scope of the additional 10% duty. Further, products already covered under Section 232 measures, including steel, aluminium and auto parts, are also not subject to the additional 10% duty.
2: यहाँ पर समझना चाहेंगे कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं सरल लोगों की भाषा में, ये हमारे लिए अच्छी खबर है या थोड़ी चिंता?
1: कुछ मिली जुली सी मैं कहूंगा, क्योंकि सेक्शन 301B है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, जिसके अंतर्गत हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है. और मुझे लगता है कि और जिस कारण से लगाई गई है वो कारण की वजह से मैंने बोला मिला जुला है, क्योंकि जबरन मजदूरी वगैरह इस प्रकार के भारत कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चीन से मंगाता है जिसमें जबरन मजदूरी होती है, अब मिला जुला सा मैं कहूंगा. हालांकि बाकी कुछ देशों के मुकाबले थोड़ा सा हमारे ऊपर कम लगा है, बाकी देशों पर 12.5% लगा है, और 70% तो हमारे वैसे ही 70% इसमें कवर होते हैं, बाकी तो हमारे वैसे ही एग्जेम्प्ट कैटेगरी, जैसा कि अभी लालिमा ने पढ़ा उसमें मोबाइल फोन्स हैं, जेनरिक ड्रग्स वगैरह हैं, जिन पे 0% है, मिला जुला सा मैं इसको कहूंगा.
2: आइए चले कोलकाता, हमारे साथ हैं डीआर आचार्य, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
5: नमस्कार सर.
2: नमस्ते
5: सर. हम एनपीएस में और थोड़ा पैसा लगाना चाहता है, तो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लगाना ठीक होगा कि नहीं?
1: आप शेयर्स में लगाना चाहते हैं तो अभी
5: एनपीएस
1: एनपीएस में लगाना? नहीं, एनपीएस में तो बहुत अच्छा विचार है आचार्य जी, आप उसमें लगा सकते हैं, आप अकाउंट को ऑनलाइन खुलवा सकते हैं.

0: और एनपीएस में जो लगाते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो आप चूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि एनपीएस में आप इक्विटी का ज्यादा कंपोनेंट चाहते हैं कि आप डेट का ज्यादा चाहते हैं, आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ज्यादा चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी आचार्य जी रिस्क एपेटाइट है, उसको हिंदी में हम कहेंगे जोखिम उठाने की क्षमता है, उसके अनुसार आप उस मिक्स को चूज कर सकते हैं। एनपीएस बहुत अच्छा है और लंबे वक्त के लिए आप नजरिया रखिए और मुझे लगता है आपको आगे कारगर सिद्ध होगा।
1: Alright, now let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices continued their upward momentum this week amid supply risks linked to West Asia conflict and disruptions to Red Sea shipping routes. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude September futures surged more than 9.8% to settle at $96.78 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures jumped 9.2% to end at $89.31 per barrel.
2: श्रोताओं, आपने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए अपनी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और शरद जी, आपने हमारे साथ चर्चा में और श्रोताओं के सवालों का जितना बढ़िया जवाब दिया उसके लिए श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: माई प्लेजर, थैंक यू सो मच।
1: Thank you, Sharad ji, once again. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register steep weekly losses amid geopolitical concerns. U.S. stock markets log weekly decline. And global crude oil prices extend rising streak this week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, signing off. So, from all of us here, Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप जुड़े हैं प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास, स्वागत है आप सबका।

किशोरदा की आवाज और फिल्म का नाम खेल खेल में 1975 की यह फिल्म है और इसी के साथ इसी आखिरी गीत के साथ विकास आपसे चाहता है इजाजत, लेकिन तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ उठा न सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति

0: कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 46,06,924 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं, जो दिल्ली के कुल 1,45,10,298 मतदाताओं का 45.53% हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं गीतों के रंग। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, वो मासूम लड़की वो बारिश की रात।

वो एक अजीब शाम थी। अजीब इसलिए क्योंकि बारिशों के पानी से सारी सड़कें भर चुकी थीं और बरसात फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली की सड़कों पर चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। एक तो शाम को ऑफिस से छुट्टी का टाइम और उस पर ये बारिश, ऐसा लगता था कि जैसे सारा शहर ही रोड पर आ गया हो। मैं देर तक किसी कैब या बस का इंतजार करती रही, लेकिन जाम की वजह से कोई भी दिल्ली से मेरठ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गोद में अपनी नन्ही गुड़िया को उठाए आखिरकार हार कर थक कर मैं एम्स हॉस्पिटल के पास एक बस स्टैंड पर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे एक अनजाने डर से मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। तभी अचानक मेरी नजर मेरे बगल की बेंच पे गई। वहां एक लड़की घुटने में मुंह छिपाए बैठी थी। इतनी रात को बस स्टैंड पर एक और महिला को पाकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अगले ही पल हजारों सवाल मन में कौंध गए। इतनी रात में ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अब इन सवालों और डर से निपटने के लिए मैंने ईयरफोन कान से लगाया और मोबाइल पर रेडियो सुनने लगी।

वो कोई रात के 11 बजे का वक्त रहा होगा जब एक कैब वाला किसी तरह मुंह मांगे किराए पर मेरठ जाने को तैयार हुआ। मैं जैसे ही कैब में बैठने को हुई तो नजर फिर से वहां बैठी उस लड़की पर गई और फिर दिल में सवाल कौन था, ये इतनी रात को यहाँ क्यों है, कहाँ जाना होगा इसे। खैर मैंने इस ख्याल को झटका और गोद में सो चुकी गुड़िया को संभाला और कैब में बैठने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं रुक गई, पीछे मुड़कर देखा तो आवाज उस लड़की ने ही दी थी। मैंने कहा, जी कहिए, आप कहाँ जा रही हैं? उस लड़की ने मानो डरते डरते पूछा था। मैं मेरठ जा रही हूं। क्यों, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? वो लड़की बोली। मन में फिर एक अनजाना सा डर उठा, पता नहीं ये किस तरह की लड़की है, कुछ जानती भी नहीं हूं इसके बारे में, ऐसे में इतनी रात को इसे अपने साथ बैठाना ठीक रहेगा या नहीं। ये सोचते सोचते जैसे ही कदम आगे बढ़ने को हुए, गोद में सोई मेरी गुड़िया गुनगुना उठी। एक नजर उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर उस लड़की को। मन के अंदर एक ममता की चिंगारी उठी जो सारे आशंकाओं के बादल को चीर गई। मैंने कहा, आ जाओ। वो लड़की आकर कैब में मेरे बगल बैठ गई। कैब चल पड़ी और रेडियो पर गीत बजने लगा।

वास्तव में हर राह हर सफर अपने पीछे यादों के निशान छोड़ते जाते हैं। गीत बंद हुआ तो मेरी नजर बगल में बैठी उस लड़की पर गई। मैंने गौर से देखा तो वो कोई 17 या 18 साल की कमसिन लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? बस रास्ते में ही उतरना है, वो घबरा कर बोली थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी गरिमा। गरिमा बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा? मुझे लगा कि वो थोड़ी घबरा रही है तो मैंने बातें बढ़ाने की कोशिश की। वो थोड़ा सोचकर बोली, शायद पापा ने। अच्छा वाह, वैसे क्या मतलब है तुम्हारे इस नाम का? मैंने सवाल किया। नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, आप बताइए। शायद मान सम्मान, मुझे ऐसा लगता है यही मतलब होना चाहिए। फिर बात को बदलते हुए मैंने कहा, गरिमा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई, पापा बचपन में ही गुजर गए, उसने धीरे से जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हारी माँ बहुत फिक्र कर रही होंगी तुम्हारे, कितनी रात हो गई है ना? वो चुप रही, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बात बदल दी, गरिमा देखो ना कितनी बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश का मौसम कैसा लगता है? वो बच्चों की तरह चहक उठी, बहुत अच्छा लगता है। तभी बारिश के मौसम का ये गीत बज उठा और हम दोनों हंस पड़े।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: गाने में खोई उस लड़की को अचानक जैसे कुछ याद आया। उसने मुझसे पूछा, आपके पास मोबाइल है? मुझे कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया और वो कोई नंबर मिलाकर सीट के एक कोने में सिमट कर धीरे धीरे जाने क्या बातें करने लगी। मुझे उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो लड़की बहुत अजीब लग रही थी। मोबाइल पर बात करने के बाद वो थोड़ी खुश नजर आने लगी। उसे खुश देखकर मैंने उससे फिर पूछा, गरिमा कहाँ जाना है तुम्हें, तुमने बताया नहीं। जवाब में वो मेरा चेहरा देखने लगी, मानो कोई जगह तलाश रही हो। मैंने फिर पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? घर छोड़ दिया है मैंने, भाग आई हूं घर से। वो अचानक थोड़ी आक्रोशित हो उठी। अच्छा क्यों? मैंने पूछा। रोज रोज की रोक टोक, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, बस पढ़ाई करो, दम घुटने लगा था मेरा घर में। अब वो बहुत अलग सी लड़की दिखाई दे रही थी। घर छोड़ दिया, लेकिन अब जाओगी कहां? कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के पास, अब वही मेरा सब कुछ है, बहुत प्यार करता है मुझे। कहाँ मिलेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कहीं रास्ते में, उसने कोई फिक्स जगह नहीं बताई। अच्छा कहाँ रहता है वो? मैंने फिर पूछा तो उसने कहा, पता नहीं। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी उसने तुम्हें आने के लिए कहा और तुम घर छोड़कर चली आई? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो वो बोली, प्यार करती हूं मैं उससे, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। मैं सोच में पड़ गई, ये नादान लड़की इतना भी नहीं समझ रही कि जिसे ये भरोसा कह रही है वो केवल नासमझी है, और जिसे ये प्रेमी कह रही है वो केवल एक धोखा है, छलावा है। ये अल्हड़ मासूम लड़की अभी नहीं जानती इस रंग बिरंगे

उसे समझाना चाहती थी, लेकिन ये भी डर था कि कहीं ये बुरा मान गई और इतनी रात को रास्ते में कहीं उतर गई तो क्या होगा फिर इसके साथ। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने बात को बदलते हुए कहा, गरिमा देखो बारिश अभी भी हो रही है, कुछ लोग इस बारिश को खराब मौसम कह रहे होंगे और कुछ बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि प्रेमियों को ये सावन का मौसम बहुत हसीन लगता है ना? हाँ बिल्कुल, वो चहक पड़ी। जब ये काली घटाएं घिरती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे ही भिगोने आ रही हैं और मेरा मन करता है कि बस मैं बारिश में भीगती रहूं। और अगर वो होता तुम्हारे साथ तो? मैंने जानबूझकर मजाक किया। तो इस मौसम में चार चांद लग जाते, उसने उसी चहक के साथ जवाब दिया। वैसे वो अभी मिलेगा कहाँ, मेरा मतलब है अगर वो भी साथ होता हमारे तो अच्छा लगता। मैंने बहुत संभल कर बात आगे बढ़ाई। पता नहीं कहाँ होगा, पूछ लो फिर, मोबाइल नहीं है मेरे पास, उसने मुझे मोबाइल लाने से मना किया था। क्यों मना किया था, मैंने पूछा। उसे डर है कि कोई हमें ढूंढ ना ले, बहुत टैलेंटेड है वो, उसने मुस्कुरा कर कहा। बहुत चालाक है वो, मैं धीरे से फुसफुसाई। अच्छा तो बात कैसे करती हो उससे? ऐसे ही, जैसे अभी आपसे मांग कर किया, उसने जवाब दिया। तो ये बहुत गहरे प्यार का मामला है, मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। जी, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे क्या उम्र है तुम्हारी, वो बोली। 18 की हो गई हूँ। मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी, मैंने शरारत से कहा। तो वो हंसकर रह गई। मैंने उसकी मासूम आंखों में झांका, वहां रंग बिरंगे सपने तैर रहे थे और मुझे एक गीत याद आया।

कैब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से जगह जगह जाम मिल रहा था। अचानक मेरी गोद में सोई गुड़िया रोने लगी। मैंने कैब एक जगह साइड में रुकवाई, गुड़िया को फीड कराया, दवा दी और फिर उसे बहलाने लगी। गरिमा भी गाड़ी से नीचे उतर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। थोड़ी देर खामोश रहकर वो बोली, कितने साल की है आपकी गुड़िया? 1.5 साल की। क्या हुआ इसे? कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट है इसे, दिल की बीमारी। एम्स से इलाज चल रहा है, आज भी वहीं गई थी। इसके पापा कहाँ हैं? मेरा मतलब आपके हस्बैंड, गरिमा कुछ सोचते हुए बोली। बेंगलोर में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैंने उसे बताया। मैं भी पहले इसी जॉब में थी, लेकिन अब जॉब छोड़ चुकी हूं। आपने जॉब क्यों छोड़ी? उसने पूछा। मेरी गुड़िया मेरी दुनिया है और इसका भविष्य मेरे लिए किसी भी चीज से अनमोल है गरिमा। मैं अपनी बच्ची को बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए देखना चाहती थी। लेकिन आप ये बेंगलोर में अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी कर सकती थी, फिर आप यहां कैसे? उसने सवाल किया। वहां मेरी गुड़िया का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहां मेरठ में अपने भाई के पास आ गई ताकि एम्स में मेरी बेटी का अच्छे से इलाज हो सके। आप अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हैं? गरिमा ने धीरे से पूछा। जी, अपनी जान से भी ज्यादा। और मैं ही क्या, हर माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं गरिमा। काश कि मैं अपनी जान देकर भी अपनी बच्ची को ठीक करा पाती। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कैब फिर से चल पड़ी थी और मैं गुड़िया को निहारते हुए

गीत गुनगुना रही थी और गरिमा कुछ सोच रही थी। अचानक उसने पूछा, आपने कभी प्यार किया है? हाँ किया है, बहुत प्यार किया है ना, अपनी इस बच्ची से, मैंने जवाब दिया। नहीं मैं तो किसी और प्यार के बारे में पूछ रही थी, मेरा मतलब प्रेमी या पति से। अच्छा वो, हाँ किया है। तो फिर आपकी लव मैरिज हुई होगी है ना? हाँ मैंने उसे जवाब दिया। भाग कर की? उसने पूछा। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कहा। मतलब आपके पेरेंट्स मान गए थे शादी के लिए? नहीं। वो इन बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। गरिमा, भाग कर शादी करना ना तो मुझे मंजूर था और ना ही उसे जिसे मैं प्यार करती थी, मैंने उसे जवाब दिया। क्यों, जब माँ बाप को हमारे प्यार की परवाह नहीं तो फिर ऐसे माँ बाप को छोड़ देने में हर्जी क्या है? उसके हर सवाल और हर जवाब से मुझे लग रहा था कि वो लड़की अपने लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उससे कहा, गरिमा मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने एक नज़र गोद में सोई गुड़िया पर डाली और फिर बोली, मुझे विश्वास था गरिमा कि मेरे माता पिता मेरे बारे में बेहतर सोचेंगे, इसलिए उनके फैसले मुझे मंजूर थे। एक सच ये भी है कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की अगर मिडिल क्लास की है तो आज भी उसके पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो समझा जाता है, उसके विपरीत जो लड़की भाग रही है उसे जिंदगी भर समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लोग उसका और उसके माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि लड़का और लड़की के बारे में ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज का यही नजरिया है जिसे इतनी जल्दी बदल पाना संभव नहीं। सोचो गरिमा, अगर मैं और साहिल सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर घर से भाग जाते तो मेरे वो माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, क्या वो सुकून से जी पाते? फिर मेरी नजर मेरी गोद में सोई बच्ची पर पड़ी, और ये बच्ची जिसके लिए आज मैंने अपने करियर, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, अगर ये बड़ी होकर मुझे एक दिन छोड़कर किसी के साथ भाग जाए तो? गरिमा चुप रही, सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी थी, शायद अपने हालात के बारे में, उसकी अपनी भटकती जिंदगी के बारे में।

फिर उसने धीरे से सिर उठाया और पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, तो ये जो प्यार है इसकी कोई अहमियत नहीं? प्यार गरिमा, प्यार क्या होता है पहले ये समझ लेना जरूरी है। क्या होता है प्यार और इसका सही मतलब, उसने पूछा। तुम प्यार में हो और प्यार की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। तुमने अपना फायदा नुकसान नहीं सोचा। ये प्यार हो सकता है, लेकिन जिनसे तुमने प्यार किया और तुम जिनके साथ भाग रही हो, क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है? शायद नहीं। वो अगर तुमसे प्यार करता होता गरिमा, तो वो तुमसे इस तरह अकेली घर छोड़कर आने के लिए नहीं कहता। प्यार तो खुद समर्पण करता है। प्यार किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसका भला चाहना होता है। कोई अच्छा लग गया तो उसके साथ भाग जाओ या भगा कर ले जाओ, ये प्यार नहीं, स्वार्थ है। अगर किसी दिन उसके साथ नहीं निभी तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन सा ठिकाना होगा? माता पिता को तो पहले ही छोड़ दिया, अब? गरिमा अपने होठों को दांतों से चबाने लगी थी। मैं बोलती जा रही थी, गरिमा प्यार तुम्हारी माँ तुमसे करती हैं। वो तुम्हारे बिना कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगी। पति को खोकर उन्होंने किसी तरह तुम बच्चों के सहारे खुद को संभाला होगा। अब उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, इस सोच से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और तुम्हारे पापा, जिन्होंने प्यार से तुम्हारा नाम गरिमा रखा, तुम उनके नाम की गरिमा रख पाओगी? वो लड़की सिर झुकाए बस चुपचाप सुन रही थी। मैं जानती थी कि मैं ज्यादा बोल रही हूं, लेकिन फिर भी मैंने बोलना जारी रखा। गरिमा, मैं जानती हूं कि प्यार, शादी, जीवन साथी, ये सब भी जरूरी हैं, लेकिन एक सही समय पर, जब हम दुनिया में अपना एक मकाम हासिल कर लेते हैं, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब, उसके पहले नहीं। और अगर उसके पहले कोई अच्छा लगने लगे तो? उसने सवाल किया। तो अगर वो वास्तव में मुझे प्यार करता है तो वो मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स का भी सम्मान करेगा। मुझे ऊंचा उठने में मेरी हिम्मत और ताकत बनेगा। जी हाँ, साहिल यानी मेरे प्रेमी ने मेरी भावनाओं का और मेरे पेरेंट्स के मान सम्मान का ख्याल रखा। वो स्वार्थी नहीं था, उसने इंतजार किया। जब तक कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो गई, जब तक कि वो खुद सक्षम नहीं हो गया और जब तक कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं गए, वो धैर्य से बस इंतजार करता रहा। और मुझे लगता है कि हर प्यार करने वाला प्रेमी

वो लड़की खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कहीं गुम हो गई हो। कैब चलती रही, थोड़ी देर में मेरठ आ गया। रोड के किनारे मेरा भाई मुझे लेने आया था। कैब से उतरने से पहले मैंने किराया चुकाया और ड्राइवर से कहा, भैया इन्हें कुछ आगे तक जहां ये कहें पहुंचा दो और प्लीज मुझे कॉल करके बता देना। इतना कहकर जब मैं उतरने लगी तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनिए मुझे एक कॉल करनी है। मैंने मोबाइल उसे दे दिया। उसने नंबर डायल कर कहा, सॉरी मम्मी, और सिसक कर रोने लगी। मम्मी मैं बारिश में रास्ता भूल गई थी, अब घर आ रही हूं। फिर कैब ड्राइवर से बोली, भैया मुझे गुड़गांव तक ड्रॉप कर दोगे? मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है।

तो ये थी आज की कहानी, वो मासूम लड़की वो बारिश की रात। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद 1:10 पर मेरी मुलाकात होगी आपके साथ। गीत सुहाने लेकर हाजिर रहूंगी आपके साथ। रात की तन्हाई में कुछ झांकने की कोशिश करेंगे यादों की दुनिया में।

0: इसकी लगती है।
1: तो हमने तो देखा ना, मेरे सामने ये असाइनमेंट पे काम करता था मैम, ये जर्नलिस्ट वाला काम नहीं करता था, ये वॉज ऑन असाइनमेंट कि हाँ ये कैमरा यहाँ गया कि नहीं, ये यूनिट यहाँ गई कि नहीं, ये फुटेज आई कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आई कि नहीं, ये गेस्ट को बुला वो उसको, बस।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और

0: और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 15,22,000 मृत मतदाताओं और 14,43,000 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो स्थायी रूप से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके अलावा 7,37,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,71,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य के कुल 4,16,00,000 मतदाताओं का 89.22% है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। रात के अंधियारे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं आपको, जिनसे कभी आप आबाद थे यथार्थ में। आबाद तो हैं अभी भी ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी, ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। ये दुखन, ये घुटन, ये चुभन कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि दुख निकल जाए, बह जाए, बंट जाए, यही इसका बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं

और सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को। सुहाने गीतों के जरिए, गीत सुहाने, आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे।

रिश्तों को निभाते निभाते बहुत दूर आ गए, रिश्तों को निभाते निभाते खुद को मिटा दिया, अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम हंसते बहुत हैं, मगर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते।

शिकायत कुछ नहीं तुझसे, शिकायत कुछ नहीं तुझसे कि तेरा साथ नहीं, बस तू खुश रहना, अपनी तो कोई बात नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज इस वक्त गीत सुहाने साथ हूं मैं आपकी अंजलि। तेरी चाहत में रुस्वा यूं सर बाजार हो गए, तेरी चाहत में रुस्वा यूं सर बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। लेकिन इस रुस्वाई में भी, इस खोने में भी, इस नुकसान में भी मीठी सी कसक है जो कभी कभी सहला जाती है और दिल के जख्मों का मरहम बन जाती है।

रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे पास, दर्द बनकर ही रह जाओ हमारे पास, सुना है दर्द बहुत दूर तक साथ देता है।

2:10 पर एक और नए सफर पर होंगे मैं और आप साथ साथ ही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर. तब तक इस गीत के बाद सुनेगा समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम

0: सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर शनिवार शाम 4 बजे तक 3,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर भीषण हो सकती है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation following students' protests during the past 10 days, saying that it is not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said, from day one he took full responsibility and never turned away from the situation. He said, the NEET UG results declared on July 16 were satisfactory, with many meritorious students from underprivileged backgrounds achieving success. He also said, however, even during this time, individuals holding responsible positions attempted to create obstacles and misled students, calling it an act that caused him deep anguish. Union Minister Prahlad Joshi will be the new education minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as well as New and Renewable Energy. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The CJP has withdrawn its protest after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination systems and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them. On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith एक्सप्रेस

फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे आप यहाँ। तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता। यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहाँ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी मरहम बने, दवा बने सूने अकेले दिनों का। रात सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ एक बार फिर से।

आज सुरमई इस वक्त ये सफर तय हो रहा है यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ। तेरे चेहरे की मुस्कान मेरी राहत बन गई है, तेरी चाहत ही मेरी सबसे खूबसूरत इबादत बन गई है। मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो।

0: आंखों में बसी हर सुबह तुम हो, तेरी मोहब्बत में जीना सीखा, तेरे बिना इस जिंदगी का मतलब ही बदल गया।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिसे

ध्वनि दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ रात सुरमई का ये सुहाना सा सफर यहाँ पर तय कर रहे हैं। आप और मैं अंजलि है आपके साथ और उम्मीद है कि ये गीतों की बयार जो है कुछ ना कुछ ठंडक, कुछ ना कुछ सुकून, कुछ ना कुछ दिल की गहराइयों में ज़रूर उतर रही होगी। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ।

रात सुरमई का ये सफर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं और आप, हम दोनों मिलकर, यानी कि हम सब मिलकर इस सफर को तय कर रहे हैं। और मुझे लगता

है कि कुछ इस रात सुरमई में शायद ऐसा तो महसूस हो ही रहा है हमें भी कि अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। FM गोल्ड का म्यूजिकल सफर जारी रहेगा ऐसे ही, और आगे के सफर में आपके हम सफर रहेंगे रूपा धवन। इस गीत के बाद सुनिएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: तेरा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम

मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। इस यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश की सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर आज शाम 4 बजे तक 340,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीत और संगीत की ताकत, इनसे हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे दिल की धड़कनों में बसने वाले गीत दशकों तक हमारे दिल में बसे रहते हैं, पर उनकी ताजगी आज भी वैसी है जैसी पहले के समय में थी। जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 पर मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमराही में आज हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा युगल गीतों को। आपकी दोस्त रूपा इस सफ़र में आपके साथ है, तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

सफर पर अपने दिल की बातों को सुनकर सुनाकर दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और साथ ही साथ सफर का आनंद भी दोगुना हो जाता है। आप सुन रहे हैं हमराही कार्यक्रम, और हमराही कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

0: साथियों, कुछ पल की मुलाकातों से ही जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाकर किसी को जीना सिखाया जा सकता है। ये रचनाएं जब गूंजती हैं तो सहज ही जीना सिखा देती हैं। ये रचनाएं याद दिलाती हैं अनेकों शामों की, रातों की। सुरीले मधुर गीतों को साथ में हर सफर को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है इन गीतों के जरिए। और वो यादें जो हमारे दिल में जुड़ी हुई हैं, इन गीतों के जरिए हम उन गीतों को साथ में लेकर उन यादों को भी तरोताजा कर सकते हैं।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

ध्वनि तरंगों के साथ सुरीले नगमों का आनंद ले रहे हैं आप अपने मनपसंद कार्यक्रम हमराही में। हमराही में आप सुन रहे हैं कुछ चुनिंदा युगल गीतों को। तो जनाब, हाथ थाम लीजिए अपने हमराही का और खो जाइए सुरों के इस महकते गुलशन में आपकी दोस्त रूपा धवन के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और जनाब हम बातें कर रहे हैं आपसे हमराही कार्यक्रम में, हमराही कार्यक्रम जहां हम सुन रहे हैं कुछ चुनिंदा युगल गीतों को और अपने दिल की बातों को एक दूसरे से बयां करते हैं जब, तो दो दिलों की मुश्किल हल हो जाती है, क्योंकि दुनिया भी उनके बारे में धीरे धीरे जान जाती है कि ये दिल के मतवाले हैं।

साथियों, गीतों में बातों का सिलसिला और सवाल जवाब का सिलसिला अगर गीत के माध्यम से ही मिल जाए तो कैसा लगता है, सोचिए तो। और सोचिए सोचिए तो मत, आपको हम ये गीत सुना ही देते हैं जो अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं, बेशकीमती गीत और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है कर्ज। कर्ज फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर साहब और लता जी की आवाज़ में।

तो देखा आपने और सुना भी, इतने प्यारे से सवाल जवाब हों तो गीत के माध्यम से वो भी, तो हर कोई क्यों ना गुनगुनाएगा। तभी तो हम कहते हैं ये गीत सदा से हमारे दिल पर रचे बसे हैं, हमारे जहन में रचे बसे हुए हैं। तो जब हमें दिल की कोई भावनाएं हिलोरे लेती हैं तो अपने आप एक अलग गीत हमारे दिमाग में गूंजता है और हम उन गीतों को लेकर साथ में चलते हैं। ऐसे ही अगर दिल की पुकार की बात की जाए तो दिल की पुकार पर आपके हम सफ़र का आना तय है और अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ के साथ मिलाना भी तय है।

तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां जो कि हमारे स्टूडियो की घड़ी है, उसकी सुइयां बता रही हैं, दस्तक दे रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय भी हो चला है। लेकिन फिलहाल हम बात करें अगर उन गीतों की, उन अनमोल और सदाबहार बेमिसाल गीतों की, जो गीत आज भी हमारे जहन में हैं। उनके शब्द रचना इतनी खूबसूरती से लिखी जाती थी, संगीत इतना बेमिसाल होता था, तभी तो वो गीत आज भी हमारे दिलो दिमाग पर बसे हुए हैं। हमराही में उन्हीं युगल गीतों को आज हमने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज इस सफर पर आपके साथ से ही मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन, फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद फिर से आपके साथ मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इससे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार

तो लीजिए जनाब, अपने वादे के मुताबिक हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम अरुणिमा, और अरुणिमा में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आइए सुनते हैं पहला गीत आज की अरुणिमा का।

जी हाँ, जब मुलाकात होने पर दिल में बेकरारी सी छा जाती है तो दिल कुछ ना कुछ तो कहने के लिए तड़प ही उठता है। जी हाँ, जो हमारे दिल में बात होती है उसे जबान पर लाना भी ज़रूरी हो जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 4:17 और 47 सेकेंड। आप हैं रूपा के साथ। और साथियों, जब कोई साथ में नहीं होता ना, तो हमें इंतज़ार होता है कि कोई तो शायद आने वाला है या अभी रास्ते में है, उससे मुलाकात तो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ये हमारा भ्रम भी साबित होता है। पत्थर की सनम का यह खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता जी की आवाज़ में।

कभी कभी ये इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं और इस इंतज़ार में दिल संभाले संभलता नहीं और भावनाओं का एक गहरा समंदर जो होता है वो दिल में हिलोरे लेने लगता है।

तो जनाब, जब इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, तब हमारे दिल में कई भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं और जिंदगी का उतार चढ़ाव जो है ना, वो अक्सर हमारे दिमाग में आता और जाता रहता है कि हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, कौन से सुख के दिन थे, कौन से दुख के दिन थे। क्योंकि ये जिंदगी जो है ना जनाब, ये कई रंग दिखाती है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने ही दोस्त रूपा के साथ और हम बात कर रहे थे जिंदगी के रंगों की। तो जिंदगी कभी हंसने का नाम है, कभी गाने का नाम है, तो कभी हमारे ऊपर गम के बादल भी छा जाते हैं। जिंदगी में सुख और दुख का होना तो लाजमी है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम जिंदगी को किस तरीके से निभाते हैं।

साथियों, कभी कभी हम मुश्किल हालातों के संभलने या किसी अपने का इंतजार करते हैं कि उन हालातों में हमारा वो साथ देंगे, और बस यही इंतजार काफी लंबा हो जाता है। कभी कभी अपनी राहें जो होती हैं ना, वो खुद बनानी पड़ती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की उलझनों को खुद ही समझाना होगा, जिंदगी की उलझनों को खुद ही समझाना होगा, बंद दरवाजों पर अपना ही मुक्का आजमाना होगा। असली नकली फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

दूसरों के इशारों पर चलने से अच्छा है अगर अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपना रास्ता भी बल्कि नया रास्ता खुद से ही बनाना होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी दोस्त रूपा के साथ। कार्यक्रम है अरुणिमा और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:43 और 36 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

चाहे इंसान का मन हो या लोहे का ढांचा या फिर मशीनों के सीखने का कोई सांचा, जो हिम्मत को बढ़ाए, जो गिरकर उठना सिखाए, पुनर्बलन ही जीवन को सही दिशा में लाए। क्योंकि कहते हैं ना, जिसने जिंदगी को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया।

साथियों, सुख की नींद और सपने ये दोनों ही जरूरी हैं। जी हाँ, जरूरी है सबके लिए, पर अपने सपनों को सच करना है तो इन पंक्तियों को हमें सार्थक करना होगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं।

0: गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें जवाब देना बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। फिलहाल इतना ही आज की अरुणिमा में, अब से आप कुछ देर में सुनेंगे समाचार और फिर से मुलाकात होगी आपसे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति को मानद सम्मान से भी सम्मानित किया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोष कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव

चहक उठी नभ में चिड़िया, भीनी भीनी चली हवा, जाग उठा है कोना कोना, फैला कुदरत का जादू नया। सुनहरी किरणों ने आकर अंधियारे को दूर भगाया, फूलों की पंखुड़ियों ने भी हंसकर सबको गले लगाया। जी हाँ, आज का एक नया दिन, एक नई अध्याय की शुरुआत, हमारे जीवन का वो नया अध्याय जिसे आज हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिल के मन के उद्गारों को विभिन्न रंगों से इसको भरना है। तो चलिए आज का आगाज करते हैं, अध्याय की शुरुआत करते हैं ईश्वर के नाम के साथ, उन्हें धन्यवाद देने के साथ। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार।

तो जनाब ईश्वर ने हमें एक और नई सुबह देखने को दी, जिसका हम आज दिल से उन्हें धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कल क्या हो, आज क्या हो, किस समय किसके साथ क्या हो, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ ईश्वर जानता है। और आज का दिन जो एक ऊर्जावान दिन कर बनकर हमारे साथ आया है, हमें इस दिन को और भी उत्साह के साथ आगे जिंदगी की राहों में बढ़ते जाना है, उन राहों पर जिधर हमारी जिंदगी के रास्ते चलते हैं। क्यों ना उन जिंदगी के रास्तों में कुछ और अपनी हिम्मत के साथ, अपने सब्र के साथ चलकर खुद तो खुश रहा ही जाए, दूसरों को भी क्यों ना हम खुश रखें। फिलहाल आप चल रहे हैं हमारे साथ और हम चल रहे हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त रूपा।

जिंदगी के रास्ते हमें पुकार रहे हैं, आकाश की ऊंचाइयां हमें बाहें फैला कर बुला रही हैं कि आज अपने मन की सारी दुविधाओं को पीछे छोड़ दो, मन में जितने भी नकारात्मक विचार हैं उन्हें कहीं दूर पटक दो और सकारात्मक विचारों से अपनी जिंदगी को और भी रोशन करो। तो क्यों ना आज एक खुले आकाश में छोटे से एक उस पंछी की तरह उड़कर देखें, अपने मन में वो सकारात्मक हिलोरे लाएं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।

साथियों, वैसे तो मुस्कान एक ऐसी जादुई कुंजी है जो हर चुनौती को आसान बनाती है, अपनी लंबी और खुशनुमा जिंदगी को और भी बेहतर बनाती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आंतरिक शक्ति के साथ सकारात्मकता भर देती है। जिंदगी की इन राहों पर हमारे साथ वो छोटे छोटे नन्हे से फरिश्ते भी तो होते हैं ना, जो हमें चाची, बुआ, बहन, दीदी कहकर पुकारते हैं और अपनी एक छोटी सी मुस्कान से हमारी सारी थकान, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत के साथ, बात करते हैं और सुनते हैं इस गीत की।